निर्मल ननो ओहरी नाल सूरी चौधरी रहंदा पर्वत काला मेहरा नाल निहालू सेव करंदा कक्का कालू सूरमा कद रामदास बचन मनंदा सेठ सुभागा चूणिया आरोड़े भाग उगवंदा सन मुख एक दू एक चढ़ंदा सेठ सुभागा चूणिया आरोड़े भाग उगवंदा सनमुख एक दू एक चढ़ंदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक

निज मंदर परिया तहा आंदर करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुड़िया बहुविद फिरिया पर को हरिया बिखना करिया अब साधु संग परिया हर द्वार खरिया दर्शन करिया नानक गुर मरिया बहुर न फिरिया।

शिकर शिगुर शि उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विश्व चसिया।

प्रभ चांद दीपक बन तारिका मंडल मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शबद वाजंत पेरी रहाओ सैस तव नैन नैन है तोहे को सैस मूरत नना एक तोही सैस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सैस तव गंध इव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए गोर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो इन दिनो मोहे आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारं को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाहे कर साधु अंजुली पुन वड्डाहे कर डंडोत जो जो चल है चुभै दुख पाव है दुख जन्म मरण पव खंडा है नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख

का नाश, मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कह पिछाए पछताए, कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, वैसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पस प्रगट जाए, मन्ने मग न चलै पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गयमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरे ज्ञान जे को कह करे विचार करते कह करणे नाही सुमार। तौल धर्म दया का संतोख था प्रख्या जन सो जे को बुझाए होवै सचियार धवले उपर किता भार धरती होर पराय होर दिसते भार तलै कवण जोर जी जा तिरंगा के नाल। सब ना लिखिया बुड़ी कलाम ने लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआ लिख रूप के ती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ को कवाओ तस्ते होए लख दरिया कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमुख भक्त सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ यार कूड़े फिराहि असंख नीच मल पखाहि असंख निंदक सर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया न जावा एक बार।

जत पव हरा तीर सुनियार वरण मत वेद हथियार पहु खलावन तपताऊ भंडा पहु अमृत अमृत तेत टहाल कड़िया शब्द सची टकसाल जिनको

नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं रूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाय नमस्तं अजाय नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं नामे नमस्तं ठामे नमस्तं कर्मं नमस्तं धर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं नीले नमस्तं नादे नमस्तं शेदे नमस्तं गादे नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएके नमस्तं अनेके नमस्तं भूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सोसंयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं गम्ये नमस्तं अस्त्रमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्तजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्दामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुभन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं निरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबन्दे नमस्तं निर्शाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योगयोगी नमो भोगभोगी नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शान्त्वै प्रसाद रूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है गंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीख है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नृ संगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तन ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनाम्य समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे नमो जोग जोगेश परम सिद्धे नमो राज राजेश परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भोक्ते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग

एक मूर पर एक अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक दे पे न जान नहीं। जे वेद और कते रूप रंग न जात पा सो जाने के जे तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिर चित्र चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के विखे जग जा पई जह जा पाद देवनाद मूर्त थाप्यो सबै जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विसर्च्यो स्वयं पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख आदेश धर्म तान सो परम रहत भूत लख अभे संग्राग नरंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन याद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व देन भेक सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग वर रेख परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही बहुचित मद पार छंद त्वय प्रसाद।

आततुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वपनाडियंडन बढ़िया चाचरी छंद त्वै प्रसाद। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं रे नाम्या कामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्रो चक्रवासे चत्रो चक्र मानिया चत्रो चक्र दानिया चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय अजन अजाय न चित्रय न मित्रय प्रेह पवित्रय प्रति सैदि सैदृश कृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कहते कि आश दिशे कि आप भिष है कि आगन कर्म है कि आपन परम है कि आप लोक है कि आदित शोक है कि अब दूत भरने के बेपूत करने के राजन प्रवाह है कि धर्म तो जा है कि आशोक भरने के सर्वा भरने की जगत कृति है कि शत्रु क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुप

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभाय सुजुक्त सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अभेदीय रूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओहंगाध रूप है, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकाम मित्र वर्ग मित्र बाध्य अगंजे अगाध्य सुपंग सर्वभाग्य सुसर्वानुरागे त्रिभुक्ता स्वरूप है, अछिद्य है, अछूत है, किनर्कम प्रणास है, प्रतिकूल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटह है, अगह है, असम है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रशंत है, प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता ऋषावल चंद त्वय प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वैभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे स्रवंगी अनुपे न पुत्र न पुत्रय न सत्र न मित्र न तातय न मातय न जातय न पातय न साक श्री कमितो अमीक सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंत है प्रसाद कि जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज कर हिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवास है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कसाइब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सरबुल गुबन है हमें सुलर बन है तमाम मुल्तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस है समस्त अदीस है आदे सुलेख है हमे सुलपेख है जमीन उल जमा है आमी कुल माँ है करीम उल कमाल है के जुरत जमाल है के चलम प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो बेपूत है के मितो पसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मद पार छंद त्वय प्रसाद

कृत है धरणी धृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंभर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रे पतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात शन नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो ते तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोग्य नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांत

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी उबाच बेनती चौपाई हमरी क्रोहा दैरच्छा पूर्ण हुई चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो पतवारा हमरे दुष्सभय तुम का भवा पहा दे मोहि बचावा सुखी बसे मोरो परिवारा सेव सिख सभय करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन का आज संगर ये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ को ये वरन त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेव को सिख्या हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाद दे मुझे अबर ये मन काल का त्रास निवर ये हुजू सदा हमारे पच्छा श्रीस्तु जो करी और अच्छा राख लिहु मेरा खनहारी साहिब संसाहि प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमसा जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जग मनायो देव दैत जत्थन उपजायो अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जनी आप सवारी सेवकन को सबगुन सुख दियो सत्रन को पल मोहबत गियो घट घट की अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशान चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशान कड़ कड़ की पड़ पड़ की जान जाबो कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या कर कर तो कब हूँ तो मैं मिल दे तर सब हूँ जे ते बदना श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सभी ते रहत निरालम जान भेद भेद रियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदा नीना नाद संता का मूल उचार भेदा जा को भेव न पाप भेदाता को कर पाहन अनुमान महामूल कश भेद न जान महादेव को कैत सुदा शिव निरंकार का चिंत न भेवे आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण भिन्न भिन्न तो हे तेती तुमरा लखाना जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंग भयुरा कहीं भूपा इंड जेर जसे तजकिनी उत्पुज खान बौर राजनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिम भयु शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंपव्या जुगा स्वरूप संयंपव अव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठपत उत्पाता सकल मलेश करूरन काता जे अस्तुज ताव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखते हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्य है ताके काल निकट नह है रक्षा होता है सब काला दोसठ अरेसठ टरें तत्काला कृपा दृष्टन जाहि ने हरि हो ताके ताप तनक मैं हर हो रित सद कर्मो सब होई दुःशाश्व

चौपाई संबत 1768 के हिज्जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाई गहे जपते तुमरे तपते को आखरे नैया न्योराम नहीं पुराण पुराण अनेक है मत एक न मान्य सिमर शास्त्र वेद सब

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वादा हियां राग रतन परवार परियां।

संत हो कथे हो अकथ कहानी मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोड़ी जनेत परम भुलाया माया तमोनी किने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले सास तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई ऐसा कम मूले ना कीचै जिते अंत पछोताई ऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगमा गोचरा तुरंत ना पाया अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे आख है तवेख है सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया सुन और मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तो दो पाए एक वेख परसनु आया लभ लो अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप ठत ने अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगता हकीरी बिखम मार्ग चलना लभ लो अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना।

संत जना हर मेलो हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी

सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइया जह डिठी सब दुख जाय। तीक बहादुर सिमरिया करनो न दया बताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान।

हजूर, जान भगवंत पूरे गुर का पूरन मंत। हर तन खाट किए पंडार, मिल सतगुर सब काज सवार। हर के नाम रंग संग जागा।

सास सास संते प्रीत पाल, संत का दुखी राज ते टाल। संत की निंदा करो ना कोए, जो निंदे तिसका पतन होए। जिसको राखे सिर जनहार, चख मारो सगल संसार। प्रभ अपने

सेव सगल फल पाए, नारायण मन माहे अदार, नारायण बहुत संसार, नारायण कहत जम पाग पलायन, नारायण दंत पाने डाइन, नारायण साध साधबक सिंध, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट किन्नो परताप, नारायण संत

सीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरक नहीं इस सोग सब कुछ इसका एहो करने जोग ना इस बाप नहीं इस माया एहो अपरंपर होता आया पाप पुन का इस लेप ना लागे कट कट अंतर।

पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कौ नानक तिस गुर बलिहारी, जाके सिमरन पैज सवारी।

संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए राव। संत स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा, कहो कबीर शूशा घट बोले,

गगन पताल गगन है, चौदिस गगन रहाई ले। आनंद मूल सदा परखोतम, कट बिन से गगन ना जाई ले। मोहे बिराग पयो, एहो जी आए कहां गयो रहो। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रही। कर्म बंध तुम जियो कहत हो, कर मैं जिनको दीन रे। हर मैं तन है, तन में हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ू, सहजे होए सो होए रे। राग गौंड बाणी कबीर जियो की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मुंड मैं मार्यो। हस भाग कै चीसा मारे, या मूरत कै हों बलिहारी। आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हसदी तोर। रहाओ रे महाबत तुझ डारो काट, इसे तो रहबो कालो साठ। हस्तन तोरे तरे त्यान, वांके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी नहीं काजी अंधियारे। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर जूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना इहो मानस ना इहो देहो, ना इहो जति कहा वैसे हो। ना इहो जोगी ना अवदूता, ना इस माए न काहू पूता। या मंदर में कौन बसाई, ता कांत ना को उपाई। रहाओ ना इहो गिरही ना उदासी, ना इहो राज ना पीख मंगासी। ना इस पिंड न रख तू राती, ना इहो ब्राह्मण ना इहो खाती। ना इहो तपा कहा वै सेख, ना इहो जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरन दो मिटवाया। कौ कबीर हो राम की अंस, जस कागद पर मिटे न मांस। गौंड टूटे तागे निखुट्टी पान, द्वारी उपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़ बोहकाल। इहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम बांका मन राता। लरकी लरकन खैबो नाही, मुंडियान दिन तापे जाए। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमर वद पोती, हमको चावन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। सोनी अंदली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर। गौंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरकी हां भोग विलास। एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सुहागण गल सोहे हार, संत को विख विगसे संसार। कर श्रृंगार बहे पखियारी, ओह पिंड परायण। कर श्रृंगार बहे पखियारी, संत की ठिठकी फिरे विचारी। संत भाग ओह पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे। साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिक डायण। हम तिसका बो जान्या पिहो, जब हुए कृपाल मेरे गुरुदेव। कौ कबीर अब बाहर परी, संसारे के अंचल लरी। गौंड ग्रह सोबा जा के रे नाही, आवत पैया कूद जाए। वांके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागे दोख। तन सुहागण महापवीत, तपे तपी सर डोले चीत। रहो सुहागण किरपन की पूती, सेवक तज जगत क्यों स्यों सूती। साधु कैठाणी दरबार, सरन तेरी मोको निस्तार। सुहागण है अति सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी।
जौ लग प्राण तौ लग संगे, नाहीं ता चली वेगी उठ नंगे। सुहागण पवन तरै लिया, दस अठ पुराण तीरथ रस किया। ब्रह्मा विष्ण महेश्वर विदे, बड़े भूपत राजे है शेदे। सुहागण उरवार न पार, पांच नारद कै संग विद्वार। पांच नारद कै मिटवे फूटे, को कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदर में बल हर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पारी उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं खेते रहो। जैसे जल हर बिना जीम जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मनी परोई है। कुंडी बिन क्या घंट चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अभिगत पाई है। जैसे मात पिता बिन वाल न हुई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खासम दुहागण तज ओहिरी। कहे कबीरे के कर करण, गुरमुख होए वोर नहीं मरण। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छोटे। कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुक्त बौ पावे। कूटन किसे करो संसार, सगल बोलन कै माहे विचार रहो। नाचन सोए जो मन स्यों नाचे, झूठ ना पति है परचे साचे। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन कै मन रखवार। बजारी सोजो बजारे सोधे, पांच पलीते तो को परबोधे। नौ नायक की भगत पछाने, सो बजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जा तात ना करे, इंद्री के यतन नाम ही उचरे। को कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अत रूप विचखण। गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद भूखे कबल टहकेव। तन ओ संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलवो सारंग पाणी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न के साध रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे कै संग निका बन। अन्ने बाहर जो नर होवे, तीन पवन में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागण ना हो रंड। जग में बकते दूधा तहरी, गुप्ती खावे वाटिका सारी। अन्ने बिन ना होए सो काल, तजी अन्न ना मिले गोपाल। को कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया। राग गौंड वाणी नाम दियो जी की घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेद जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तो ना पूजे हर कीरत नामा। अपने रामे भाजरे माने आलसिया राओ। गया पिंड परता, बनारस अस वसता। मुख वेद चतर पढ़ता, सगल धर्म आछेता। गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता। सेवा सख्त संवादन, मन छोड़ छोड़ सगल पेदन। सिमर सिमर गोविंद, पजनामा तरस पव सिंध। गौंड नाद भर में जैसे मिर गाए, प्राण तजे बा को ध्यान न जाए। ऐसे रामा ऐसे हीरो, राम छोड़ चित अनत न फिरो रहो। ज्यो मीना हेरे पशुआरा, सोना गढ़ते हीरे सुनारा। ज्यो भिखी हेरे पर नारी, कौड़ा ढारत हीरे ज्वारी। जय जय देखो तै तै रामा, हर के चरण इत त्यावे नामा।

सात निमक में सतगुर बुद्ध सिख लाई, नर ते उपज स्वर्ग को जीत्यो सो अवगत अवखद मैं पाई। जहां जहां तू नारद टेके नैक टिकाबो मोहे, तेरे नाम अभिलंब बहुत जन उदरे नामे की निज मत ए गौंड। मोहे लागती ताला मिली बछरे बिन।

पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देख्या था। मोदी के कारखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देख्या था। रावण सेती सरवर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्क काना दोहां ते ज्ञानी स्याणा। हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत। नामे सोई सेविया जय देहुरा नाम सीत। राग गौंड वाणी रविदास जियो की कर दूजा इक्योंकार। सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार। बिन मुकंद तन होए ओहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीव तु मुकंदे मर तु मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंद है। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणन। जाप मुकंद मस्तक निशानन। सेब मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्मल तन लागे। लादे एक मुकंद करे उपकार हमरा कहाँ करे संसार। मेटी जात होए दरबार तो ही मुकंद जोग जुग तार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपाली ने कीट दास। कौरविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहूं की। गौंड जे हो तीर अठसठ तीर्थ नावे जे हो द्वाद सिला पुचावे। जे हो कूप तटा देव हावे करे निंद सब बिरथा जावे। साध का निंदक कैसे तरे सर पर जानो नरक ही परे। रहाओ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार सिंगार समेत। सगली सिमरत सर्वणी सुने करे निंद कवने नहीं गुने। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान सोभा मंडप पावे। अपना विगार विराना साडे करे निंद बोझोनी हांडे। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साद विचारिया कौरविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महला पहला घर पहला चौप दे इक्योंकार। सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराण। कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना। अब ही कब ही किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान सरन प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते। रहाओ कब हो जीड़ा उब चढ़ते हैं कब हो जाए पयाले। लोभी जीड़ा थिरना रहते हैं चारे कुंडा पाले। मरन लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई। एक चले हम देखो स्वामी पाए बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई। प्राणवत नानक जे तू देवे आंते होए सखाई। राम कली महला पहला सर्ब जोत तेरी पसर रही। जय जय देखा तह नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी अंध कूप माया मन गाड़िया। क्यों कर उतरो पार स्वामी राव। जय पीतर कट पीतर बसिया बाहर काहे नाहीं। तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर आपे सर भरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए जय देखा तैर समाए। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लाग सवाणी। प्राणवत नानक दासन दासा पर तहपेगा प्राणी। राम कली महला पहला जित दर बसे कवन दर कही है। दर पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। किन विद सागर तरिए जीव त्यान मरिए। रहाओ दुख दरवाजा हो रोह रखवाला आसा देसा दोए पट जड़े। माया जल खाई पानी कर वद्या सत कै आसन पुरख रहे। किते ना मानत न जाने
तुम सर नाही अवर हरे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे। अभ्यासा देसा तब ही क्यों करे एक कहे। आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत इं मरिय। रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पुत झोली मंगण के ताई पिख्या नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली। करते वार न लागे रहाओ पानी प्राण पवन वन राके। चंद सूरज मुख दिए जीव मरन जीवन को। धरती दीनी इते गुण विसरे। सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरस बहुतेरे। जे तिन मिला तकीरत आखा ता मन सेव करे। कागद लूण रहे किरत संगे पानी कमल रहे। ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मछिंद्रा नानक बोले। बसगत पांच करे नैंडोले। ऐसी जोगत जोग को पाले आप तरे सगरे कुल तारे। सो अद्भुत ऐसी मत पावे एहनस सुन समाध समावे। रहाओ पीख्या पाए भगत पै चले। होवे सो तृप्त संतोख अमुल है। ध्यान रूप होया सन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत वाणी सुन मछिंद्रा ऊधो निशानी। आसा मैं निराश बलाए नेचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक आगम सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है। पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध पेटण को आए। नेचो दे बड़ियाई गुर तार तारण हारिया। दे भगत पूरन अविनाशी हों तुझको बलिहारिया। रहो सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैरस जित ते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेट्यो साचे शब्द निवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत रलाइए। तन कर तुलहा लंगे जेत अंतर पाए तिसे तू रख। ऐनस दीवा बड़े अथक ऐसा दीवा नीर तराए। जित दीवे सब सो जी पाए। रहो अच्छी मिट्टी स

जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर विनय वरना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सखाया रहाओ। मेरे एक किन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया, तन तन बड भाग गुर सारणी, आए हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया, नामहीन फिरे से नकटे तिन कस कस नक वडाया, मोको जग जीवन जीवाल ले, स्वामी हृदय अंतर नाम बसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया, राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरखे, जित मिले हरि उर धारे, जी दान गुर पूरे दिया, हरि अमृत नाम समारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन बड भाग हमारे रहाओ, कोट कोट ते तीस ते आवे, ताका अंत न पावे पारे, हिरदे काम कामणी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे, हर जस जप जप वड़ा बड़ेरा, गुरमुख रखो उरधारे, जे बड़ पाग होवे ता पाईए, जे बड़ पाग होवे ता जपिए, हर पहु जल पार उतारे, हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखे जन कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभ, हम वार के हर प्रित पारे, राग राम कली महला पंजमा, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

मेरे मन सतगुर सेब सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई राओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया प्रभ अपना, एहो आवण जाना, जिन दिया सो चित न आवे, मोए अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजमा, पवो चरना तलियो परिया, वो ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जानो, तो धर गए सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, किन बोलो गुरमुख वाणी रहो। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुर मिलो नवे निद पावो, इन विद तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस स्यों करो बुराई। सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, धन धन से जन जिनी, कल मैं हर पाया, जन नानक सद कुरबानी। राम कली महला पंजमा, आवत हरख न जावत दुखा, न व्यापे मन रोगनी, सदानंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल वियोगनी। ए विद है मन जोगनी, मोह रोग मोह सोग, रोग लोग न व्यापै, तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्र अमृत पवित्रा, प्याल पवित्र लोगनी, आज्ञा करी सदा सुख पहुँचे, जत कत देख पेखो हर गुणी। नै शिव शक्ति जल नहीं पवना, तय कार नहीं मेदनी, सतगुर योग का तहां निवासा, जय अविगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गणी। कौ नानक हम तुम गुर खोई है, अबे हम मिलोगनी। राम कली महला पंजमा, त्रै गुण रहत रहे निरारी, साधक सिद्ध न जानी। रतन कोठरी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने। आचार्य किश कहण न जाई, वस्त गोचर पाई रहाओ। मोल नहीं कुछ करने जोगा, क्या को कहे सुनावे, कथन कहण को सोजी न।

हरि आपे पूर भंडारा, ऐसा रस अमृत मन चाख्या तृप्त रहे अघाई, कौ नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की शरणाई। राम कली महला पंजमा, अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे, जिन बैरी है जग लूटिया ते बैरी लै बाधे, सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी, नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ, चेतना बस दूजी बाता सिर उपर रखवारा, बेपरवार रहत है स्वामी क नाम है आधारा, पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता, तत् सार परम पद पाया छोड़ न कतू जाता, वर्णन साको जैसा तू है साचे अलख पारा, अतल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजमा, तू दाना तू अब चल तू ही जात मेरी पाती, तू डोल कदे डोले नाही ता हम कैसी ताती, एक तू ही एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया रहाओ, तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तित तिल संक न मानो, हम पहुँचे सदा निहाला, हम बालक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम भी संग घाए, मिलत मिलत मिलत मिल रया, नानक कहण न जाए। राम कली महला पंजमा, कर कर ताल पखा वच नैनो माथे बजे रबाबा, करनो मद वासरी वाजे जे वातन अगाजा, नृत्य करे कर मनुआ नाचे आने को कर साजा, राम को नृत्यकारी पेखे पेखण हार दयाला, जेता साज शिंगारी रहो अखार मंडली तारन सवाई, ऊपर गगन चंदोआ, पवन विचोला करते केला जलते ओपत होआ, पंच तत् कर पुत्रा कीनी किरत मिलावा होआ, चंद सूरज जोय चरे चरागा चौकट पीतर राके, दस पातो पंच सगीता एके पीतर साते, पेन पेन होए पाप दिखावे सबो निरारी पाखे, कर कर निरत होवे दिन राती कट कट बांजे तूरा, एक नचावे एक पवावे एक आए जाए होए तूरा, कौ नानक सो बोहर न नाचे जिस गुर पेटे पूरा। राम कली महला पंजमा, ओंकार एक तुन एक है एके राग लापे, एक देसी एक दिखावे एको रहा व्यापे, एक सुर ते काही सेवा एको गुर ते जापे, पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ रहो, पंच विजेतर करे संतोखा सात सुरा ले चाले, वाजा मान तान तज ताना पाओ न भीगा काले, फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले, नारदी नर हर आण जान हदूरे, कुंगर खड़क त्याग बिसूरे, सहज आनंद दिखावे पावे एहो निरतकारी जन्म नावे, जे को अपने ठाकुर पावे कोट माध्यो कीर्तन गावे, साध संगत की जहां वो टेक कौ नानक तिस कीर्तन एक। राम कली महला पंजमा।

करसो है। धनवंता होय क्या को गर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है। यत सूरज को कहा वह, प्रभु की कला बिना कहता है।

सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाय बसै बिनासी कौ नानक काटे जम फासी।

प्रभराता गुर प्रसा नानक जाता सलोक फिरत प्रभ आया प्रिया तो शरण आई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाच।